0: बड़े मियाँ, इन लकड़ियों की क्या कीमत है?
1: इनकी कीमत हम मियाँ बीवी का एक वक्त का खाना।
0: तो लो, ये तुम्हारे दोनों मियाँ बीवी के लिए काफी है, मंजूर है ना?
1: जी हाँ।
0: आओ ले आओ।
1: चलिए।

मूव जाना रेडियो, वही रेडियो स्टेशन है जो कि 24 घंटे लगता है आपको खिदमत करते हैं हर एक रोज रात और दिन। वीर बेटा उजाला रेडियो आपके हर काम काज के लिए उजाला रेडियो सही पता है। चेक फॉर मेरी इन्फॉर्मेशन ऑफ उजाला बिंद नाउ। उजाला रेडियो सुनाई देता है खुली हवाओं में, काबल के जरिए, ऑनलाइन उजाला रेडियो के ऐप के जरिए या तो DAB प्लस के जरिए आप सुन सकते हैं उजाला रेडियो चारों ओर। जहां पर भी आप जाइए हमें साथ मिले जाइए। उजाला रेडियो आपको हर एक वक्त हर एक हाल में काम आ सकता है। काम में लाए उजाला रेडियो, उजाला रेडियो आपके साथ।

वाह वाह वाह, या इश्क तेरा लगता है जरूरी बाय सोनू निगम एंड श्रेया घोषाल. एंड दैट इज द टाइटल ट्रैक गेवेस हियर होर्ड अप हियर बाय उजाला रेडियो. अरिजीत सिंह मेन म्यूजिक फन अमाल मलिक दिल को मैंने दी कसम.

0: Is jouw business toe aan de volgende stap? Klaar om te groeien of nog groter te worden? Adverteer op Ujala Radio. Mail naar info@ujala.nl.
1: रात और दिन के देवे है तोर साथ, के तोर साथ सोते है, के तोर साथ जागे है, केकर साथ तू ओतो में घूमे है, और केकर साथ तोर घर के सब काम होवे है। उजाला रेडियो के साथ तो हाँ, हमेशा सुख में और दुख में उजाला रेडियो तू जान।

उजाला रेडियो का प्रोग्राम में और मृत्यु समाचार को आप सुनिए। अम्स्टर्डम से परिवार भोला बहुत दुख के साथ ये सूचना को कर रहे हैं कि बीते हुए शनिचर को 87 साल के आयु में ज़ेफ़रन तख्तख यार औद पत्नी श्रीमती बेत्सी भोला का पति लड़कन एरविन सुदेश मीला और सुचित्र के पिता रोशिला नॉर्मा स्टेफन और केनेथ के ससुर 7 लड़कन के नाना और आजा और 4 लड़कन के परनाना और पर आजा अम्स्टर्डम ज़ुइटोस वोन ग्रुप आनंद ज्योति का रहने वाला श्रीमान आंद्रे भोला के मृत्यु अम्स्टर्डम में हो गई है। पारामारिबो में कॉर्नेलिया स्ट्रैट का रहने वाला था। अम्स्टर्डम से परिवार लड़कन भोला बहुत दुख के साथ ये सूचना को कर रहे हैं कि बीते हुए शनिचर को 87 साल की आयु में ज़ेफ़रन तख्तख यार औद पत्नी श्रीमती बेत्सी भोला का पति लड़कन एरविन सुदेश मीला और सुचित्रा के पिता रोशिला नॉर्मा स्टेफन और केनेथ के ससुर 7 लड़कन के नाना और आजा और 4 लड़कन के परनाना और पर आजा अम्स्टर्डम ज़ुइटोस वोन ग्रुप आनंद ज्योति का रहने वाला श्रीमान आंद्रे भोला की मृत्यु अम्स्टर्डम में हो गई है। पहले पारामारिबो कॉर्नेलिया स्ट्रैट का रहने वाला था। अर्थी से विदाई लेने के मौका है आने वाले शुक्रवार के रात में 7:15 बजे से 7:15 बजे तक फ्रेडाखाफन फन क्वर्त ओफर ज़ेफ़न तो क्वर्त ओफर आख्त वेंसगार्डे क्रिमाटोरियम ओक मिरवेख 275 अम्स्टर्डम ओस्टडॉर्फ में और अर्थी के दाह क्रिया आने वाले शनिचर के दिन में 1 बजे से ज़ातरदखास्तांद 1 uur किए जाएंगे वेंसगार्डे क्रिमाटोरियम ओक मिरवेख 275 अम्स्टर्डम ओस्टडॉर्फ में। सुनने वालों से निवेदन है सूचना को और आगे तक पहुंचा देने के लिए उजाला रेडियो समस्त परिवार भोला के दुख में शामिल है।

0: उजाला रेडियो पर सुनिए यादगार गीत।
1: अजीज दोस्तों, हिंदुस्तान की आजादी की सालगिरह पर मैं और मेरे साथी आपको दिली मुबारकबाद पेश करते हैं, और जिस शौक से आप आजादी का जश्न मनाने यहां आए हैं उसका शुक्रिया अदा करते हैं। आज रात यौमे आजादी के शानदार जश्न पर मैं और मेरे साथी आपके सामने एक कव्वाली पेश करने वाले हैं, मगर इससे पहले मुझे इतनी गुजारिश करनी है कि आज ये कव्वाली महज कव्वाली नहीं बल्कि मेरी जिंदगी का, मेरी मोहब्बत का बहुत बड़ा इम्तिहान बन गई है। हादसा अक्सर इंसान को एक दोराहे पर लाकर खड़ा कर देते हैं और उसे फैसले का हक होता है कि वो कौन सा रास्ता इख्तियार करे, मगर मेरे लिए तो वो दोराहा भी नहीं, मेरे लिए एक ही रास्ता है, एक ही फैसला, एक ही अंजाम। इसलिए आज इस भरी महफिल के सामने मेरा ये वादा है, या तो वो हाथ जिन्होंने मेरे गले में ये हार डालते हुए मोहब्बत की कस्में खाई थी मुझे दोबारा ये हार पहनाएंगे, या आज की रात मेरी जिंदगी की आखिरी रात होगी।

प्रात और दिन के देवे है तोर साथ, के तोर साथ सूते है, के तोर साथ जागे है, केकर साथ तू ओतो में घूमे है, और केकर साथ तोर घर के सब काम होवे है। उजाला रेडियो के साथ तो हाँ, हमेशा सुख में और दुख में उजाला रेडियो तू

कल आया था वो आज गया, और जो आज आया है वो कल जाएगा। इसी के साथ सुनिए मृत्यु समाचार।

खुशी के साथ गमी है, पैदाइश के साथ मौत। उजाला रेडियो का प्रोग्राम में मृत्यु समाचार आप सुनिए। अम्स्टर्डम से समस्त परिवार, लड़कन हीरा लाल बहुत दुख के साथ ये सूचना को कर रहे हैं कि बीते हुए बीफे को 87 साल की आयु में ज़ीफ़नन तख्तख यार औत। पत्नी श्रीमती मारी हीरालाल उदयराम का पति लड़कन जूलियन और परिवार, ग्लेन और परिवार, नालिनी और परिवार, इरेन और परिवार, हैंक और परिवार, जिम और परिवार, शारदा और परिवार, जॉय और परिवार, योसेफ और परिवार, जेरी और परिवार, शर्मिला और परिवार और स्वर्गीय जॉन और परिवार के पिता अम्स्टर्डम का रहने वाला श्रीमान योसेफ चंद्रभान हीरालाल की मृत्यु अम्स्टर्डम में हो गई है। इन्हें लोग जीवित में भान के नाम से पहचानते और पुकारते थे। सूरीनाम में पहले लेली दौरप सिदोरे जोवेक देसा का रहने वाला था। अम्स्टर्डम से परिवार हीरालाल बहुत दुख के साथ ये सूचना को कर रहे हैं कि बीते हुए बीफे को 87 साल की आयु में ज़ीफ़नन तख्तख यार औत। पत्नी श्रीमती मारी हीरालाल उदयराम का पति, सभी लड़कन जूलियन, ग्लेन, नालिनी, इरेन, हैंक, जिम, शारदा, जॉय, योसेफ, जेरी, शर्मिला और स्वर्गीय जॉन और परिवार, इन लोगों के पिता अम्स्टर्डम का रहने वाला श्रीमान योसेफ चंद्रभान हीरालाल की मृत्यु अम्स्टर्डम में हो गई है। भान के नाम से लोग इन्हें पहचानते और पुकारते थे। सूरीनाम में पहले सिदोरे जोवेक देसा लीली दौरप का रहने वाला जो था। अर्थी से विदाई आप ले सकेंगे आज बुध के रात में 7 बजे से 8 बजे तक ओला जोयत के मुर्दालय फ्रेतरूस कसराते 91 अम्स्टर्डम जोयत में। अर्थी के दाह क्रिया कल बीफे के दिन में 4 बजे मोरखन दोंदरदख फिर किए जाएंगे। वेस्ट खार्द क्रिमाटोरियम ओक मेरवेख 275 ओक मेरवेख 275 अम्स्टर्डम उस दौरप में। निवास स्थान पर बैठक नहीं किए जाते हैं। और जानकारी के लिए तारका नंबर है 06 28 41 71 06 28 41 71 71। सुनने वालों से निवेदन है सूचना को और आगे तक पहुंचा देने के लिए उजाला रेडियो परिवार हीरालाल के दुख में शामिल है।

और मृत्यु समाचार प्रोग्राम में आप सुनिए हौतन्स के रहने वाले समस्त परिवार महादेव मिसीर बहुत दुख के साथ ये सूचना को कर रहे हैं कि बीते हुए बीफे को 72 साल की आयु में त्वेयन जीवन तखियार औत पत्नी एल्फी का पति लड़कन किशन विकास अमरेश और करिश्मा के पिता मीरांडा लिंसे शकीता और राम के ससुर जायदा जनायरो रोशन और नीलन के आजा हौतन का रहने वाला श्रीमान चंद्रदत्त महादेव मिसीर की मृत्यु निवखैन के सेंट आंतोनियो सिकन हाउस में हो गई है। हौतन से समस्त परिवार महादेव मिसीर बहुत दुख के साथ ये सूचना को कर रहे हैं कि बीते हुए बीफे को 72 साल की आयु में त्वेयन जीवन तखियार औत पत्नी एल्फी का पति लड़कन किशन विकास अमरेश और करिश्मा के पिता मीरांडा ब्लिंसी शकीता और राम के ससुर जायदा जनायरो रोशन और नीलन के आजा हौतन का रहने वाला श्रीमान चंद्रदत्त महादेव मिसीर के मृत्यु निवखैन के सेंट आंतोनियो जिकन हाउस में हो गई है। अर्थी से विदाई लेने के मौका यह है आज रात के 6 बजे से 7 बजे तक, आज बुधवार की रात में 6 बजे से 7 बजे तक, और अर्थी के दाह क्रिया आने वाले शुक्रवार के दिन में 4 बजे फ्रेदा खानस्तांद फिर उर किए जाएंगे दांगलोबेक क्रीमाटोरियम, और यह फ्लोरिडा ड्रीव नंबर 7 उत्तराखंड ओवर फेख्त में। सुनने वालों से निवेदन है सूचना को और आगे तक पहुंचा देने के लिए उजाला रेडियो के साथ आखिरी सफर फरसोरखिंग परिवार महादेव मिसीर के दुख में शामिल है।

0: देश हूँ।
1: और मृत्यु समाचार को आप सुनिए। अलमेरा के रहने वाले परिवार प्यारे बहुत दुख के साथ ये सूचना को कर रहे हैं कि कल मंगलवार को 91 साल की आयु में इन निहंत यार औत लड़कन इंग्रिद जिन बेटा और केत प्यारे की माँ सभी लड़कन के आजी नानी पर आजी और पर नानी अम्स्टरडम ज़ुइटोस्ट एफियन हेनरियट रोलांड होल्स्ट हाउस की रहने वाली विधवा जगदेई प्यारे रामदीन की मृत्यु हो गई है। अलमेर से लड़कन प्यारे बहुत दुख के साथ ये सूचना को कर रहे हैं। कल मंगलवार को 91 साल की आयु में इन निहंत यार औत लड़कन इंग्रिद जिन बेटा और केत प्यारे के माँ सभी लड़कन के आजी नानी पर आजी और पर नानी अम्स्टरडम ज़ुइटोस कॉर्टफोर्ट एफियन हेनरियट रोलांड होल्स्ट हाउस की रहने वाली विधवा जगदेई प्यारे रामदीन की मृत्यु हो गई है। अर्थी के दाह क्रिया आने वाले शुक्रवार के दिन में 2:30 बजे फ्रेदा खानस्तांद हलफदरी किए जाएंगे वेस्ट खार्द क्रीमाटोरियम ओक मेरवेख 275 ओक मेरवेख 275 अम्स्टरडम ओस्टडॉर्प में। और जानकारी के लिए तार का नंबर है 06-13-77-31-08 सुनने वालों से निवेदन है सूचना को और आगे तक पहुंचा देने के लिए उजाला रेडियो परिवार प्यारे और परिवार रामदीन के दुख में शामिल है।

उजाला रेडियो है ये, और यहीं से शोक प्रोग्राम यादें आप सुनेंगे। सीएच आत्मा की आवाज में गीत आप सुनेंगे, और ये गीत पेश है हौतिन के रहने वाले परिवार महादेव मिसीर। पत्नी अल्फी की तरफ से प्यारा स्वर्गीय पति लड़कन किशन, विकास, अमरेश और करिश्मा महादेव मिसीर की तरफ से स्वर्गीय पिता मीरांदा, लिंसे, शकीता और राम के तरफ से स्वर्गीय ससुर जायदा, जनायरो रोशन और नीलन के तरफ से स्वर्गीय आजा, स्वर्गीय श्री चंद्रदत्त महादेव मिसीर की याद में 72 साल की आयु में इनकर मृत्यु जो बीते हुए बीफे को हो गई है, इन्हीं की याद में ये गीत पेश है।

0: कहने को बहुत कुछ था मगर कह नहीं पाए। और गीत अभी आप सुने सी चांतमा की आवाज में, जो पेश की गई पत्नी श्रीमती अल्फी की तरफ से स्वर्गीय पति लड़कन किशन, विकास, अमरेश और करिश्मा महादेव मिसीर की तरफ से स्वर्गीय पिता मिरांडा, लिंसी, शकीता और राम की तरफ से स्वर्गीय ससुर जायदा, चेन्नईरो रोशन और नीलन के तरफ से स्वर्गीय आजा, स्वर्गीय श्री चंद्रदत्त महादेव मिसीर की याद में इनकर मृत्यु 72 साल की आयु में बीते हुए बीफे को हो गई है। इन्हीं की याद में गीत पेश की गई है। और यहीं तक आप सुने उजाला रेडियो पर आज शोक प्रोग्राम यादें हैं।
1: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op de A2 richting Utrecht stond een vrachtwagen met pech tussen Rosmalen-West en Zaltbommel. Inmiddels is de berger aanwezig, maar de rechterrijstrook blijft nog even dicht. Het rijdt langzaam over 9 kilometer met 20 minuten oponthoud. Dan de A50 Zwolle richting Arnhem. Daar zorgt ook een vrachtauto met pech voor een afgesloten rechterrijstrook tussen Vaassen en Apeldoorn. 8 kilometer en ook hier 15 tot 20 minuten vertraging. De A67 nog richting de Duitse grens. Tussen afrit Panningen en Velden is een ongeluk gebeurd. Ook hier is de rechterrijstrook dicht en je vertraging 35 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: और आज का प्रोग्राम हम शुरू करते हैं इस गाना के साथ। फिल्म का नाम है कामचोर। हम गनवा उजाला पे सुन ली तो सवेरे सवेरे फ्रुकू फ्रुकू करो गनवा द्राय करता है अब उजाला एम फम को ले खास हम बोली गनवा कितना मोई गाना है यार है जो पति या नहीं नहीं, नहीं जो पत्नी है या पति है दोनों अलबाई बीवी है या खाविंद है ये फ्रेंड या फ्रेंडियन अगर आपस में एक दूसरे को इतना प्यार करते हैं आशिफ अमकार हाउत दान ये सब बातें इजहार आप कर सकते हैं दान सेख ये सुडिंगर्स मक्लक तो कि तू हमार स्वामी बाटे वगैरह वगैरह वगैरह वगैरह मोई
1: उजाला कॉफी चाय मेरा शो शुरू हो गया है।

और अब तो ये जीना तेरे बिना एक सजा है यार, सजा है तेरे बिना, ये जीना सजा है तेरे बिना। जुनिता गांधी की आवाज में आप सुने उजाला रेडियो पर।

में पिघल जाओगे। इलास्टेड नार उजाला रेडियो फॉर इनफॉरमेशन कैक ऑप www.ujala.nl एंड न्यू ज़हब हसन मैं जाना जिंदगी से नहीं जाना।

जाना जिंदगी से नहीं जाना, कभी नहीं जाना, नेवर। अब इतना सुंदर गीत के बाद मैं तो कहूंगा कि कुछ ना कहो, कुछ भी ना कहो, क्या कहना है और क्या सुनना है।

सुन वालों, ये उजाला रेडियो है और उजाला रेडियो के जरिए प्रोग्राम में हम नहमा सुनान को जा रहे हैं आंस्टांड ज़ादोदाह नहीं नित्वेन्द्र एंजोल्ड डेर्टक और खुश उसको जबरजस्त हंगामेदार फेस्टिवल होने वाला है ब्राज़ा फेस्ट इंडोर समर एडिशन इंडोर हाँ तू मौसी सुन रहे हैं भीतर जिया इवेंट सेंटर दनाह में आप सुनने को जा रहे हैं नहमा इस बार प्रोग्राम में हम ला रहे हैं अफीशा की आवाज़ में ओ कमवेजक और ब्राज़ा फेस्ट

0: live vanuit de Hoofdstad.
1: अगर आपके घर पर जन्मदिन है, सालगिरह है, जो भी खुशियां हैं, उजाला रेडियो पर अगर आपको फरमाइश देना है, 15 फरमाइश 15 आवाजें फॉर मोर 100 यूरो ऑफ उजाला रेडियो, स्टूर योर ईमेल नर info@ujala.nl info@ujala.nl 15 आवाजें फॉर मोर 100 यूरो ऑफ उजाला रेडियो।

0: और आज का प्रोग्राम हम शुरू करते हैं इस गाने के साथ। फिल्म का नाम है कामचोर। हम गनवा उजाला पे सुन ली तो सवेरे सवेरे फुरुकू फुरुकू को गनवा द्राय करता है अब उजाला एम फम को लेखास। हम बोली गनवा कितना मोई गाना है गा है जो पति या नहीं नहीं, नहीं जो पत्नी है या पति है दोनों अलबाई बीवी है या खाविंद है या फ्रेंड या फ्रेंडियन अगर आपस में एक दूसरे को इतना प्यार करते हैं आशा फर्मकार हाउत दान ये सब बातें इजहार आप कर सकते हैं दान सेख ये दिस सुर्डिंगर्स मकलकर तो कि तू हमार स्वामी बाटे वगैरह वगैरह वगैरह वगैरह मोई
1: उजाला कॉफी चाय मेरा शो शुरू हो गया है।

6:13 गुजर चुके हैं मेरे प्यारे सुनने वालों, आप ही का मन चाहत और फेवरेट स्टेशन उजाला रेडियो है ये, और मैं हूं रतन राम दुलारे पांडे। आज 19 तारीख है अगस्त का, ये महीना जो चल रहे हैं और वो भी साल 2026 20। तो तहदिल से स्वागत है आप सभी को, आप सभी प्रिय सुनवाल को रतन का प्यार भरा नमस्कार और आदापर्स है। आप जहां पर भी हैं, जिस हाल में आप होंगे, दिल से आप सभी को हम स्वागत करते हैं। आज जबकि बुधवार है मेरे प्यारे सुनवाल, तो फिर एक बार मौका मिला है आपका सेवा करने का, लेकर प्रोग्राम बैक टू द फ्यूचर। फिर एक बार हम और आप मिलकर कुछ पुरानी यादें जो हैं मिलकर ताजा करेंगे, और आज प्रोग्राम फिर एक बार हम सजाएंगे पांचवीं बार द ग्रेट म्यूजिक डायरेक्टर अनु मलिक जी, इनके बहुत सारे फिल्मों के लिए इन्होंने अपना म्यूजिक दी है, गाने कंपोज की है। तो आज फिर एक बार प्लेलिस्ट को सजा रखा है खूबसूरत नगमाओं के साथ जो आप तक हम पेश करेंगे। और ये प्रोग्राम के दौरान मेरे प्यारे सुनो, हर एक घंटे पर देश विदेश का समाचार, इश्तिहारे, सड़क का हालात क्या है, मौसम का हालात क्या है, ये आपको सुनाई देगा हर एक घंटे पर। और आज भी अफसोस के साथ कहना चाहूंगा कि 7 बजे के इश्तिहारों के बाद मृत्यु समाचार भी है प्रोग्राम में, और उसके बाद शोक प्रोग्राम यादें भी सेवा में पेश किया जाएगा हियर ऑन यू आर ना द कमर्शियल ब्रेक फन सेव ऑन यूर। मेरे प्यारे सुनने वालों, बरिख्त फन उफलाए रही हियर ऑफ यू आर, और उसके बाद प्रोग्राम यादें शोक प्रोग्राम भी पेश किया जाएगा। तो मेरे प्यारे सुनने वालों, मेरे ये प्रोग्राम के दौरान आप लाइव एंड डायरेक्ट यहाँ स्टूडियो रतनराम में, जहाँ से ये प्रोग्राम बनती है, आप ऐप कर सकते हैं 02-3-3-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-
रहे दफ्तर की कार्रवाई मेरे प्यारे सुनने वालों, आपकी फरमाइशें जरूरी खबरें, मौत की खबरें, आपकी जानकारी इंफॉर्मेशन के वास्ते आप सोमवार से शनिवार सुबह में 10 बजे शाम में 3 बजे तार के जरिए दफ्तर को कांटेक्ट कर सकते हैं अप 020-409-0807 या तो 24 घंटे आप मेल करें आपकी हर एक जानकारी इंफॉर्मेशन के वास्ते आपके कामकाज के लिए फरमाइश जरूरी खबरें मौत की खबरें के लिए info@ujala.nl. आज का ओपनिंग सिलेक्शन की ओर आपको ले चलते हैं मेरे प्यारे सुनने वालों, हसीनों के पुजारी किशोर कुमार का गाया हुआ एक नगमा जो अनजान साहब जी ने लिखा और ऑफ कोर्स इसका प्रोग्राम हम सजाने जा रहे हैं आज पांचवीं बार अन्नू मलिक जी की म्यूजिक। फिल्म का नाम है बेगाना, मेरे प्यारे सुनने वालों बेगाना 1986 नीहतीन सेसन तख्त का एक फिल्म है। किशोर कुमार को पेश करता हूं। एक शुभ रात्रि आप सभी को हम कहते हैं मेरे प्यारे सुनने वालों, खा रहे होंगे तो स्वादिष्ट भोजन हो। भाई उपरक तो दिल लगाकर काम करना, और अगर आप सड़क पर हिस्सा ले रहे हैं तो संभाल के

ब्यूटीफुल सॉन्ग मेरे प्यारे सुनने वालों, एक दर्द भरा नगमा के साथ आज हमने ये प्रोग्राम को आराम की है। हसीनों के पुजारी किशोर कुमार की आवाज, मतलब ही है लोग यहाँ पर अपनों में भी है बेगाना और मतलब का भी प्यार। अनजान साहब जी ने लिखा मेरे प्यारे सुनने वालों, और अनु मलिक जिसका प्रोग्राम आज पांचवीं बार हम सजा रहे हैं, इनकी म्यूजिक पर किशोर कुमार ने गीत को गाए हैं। 1986 फिल्म का नाम बेगाना, ये फिल्म से गीत हमने निकाले जिसका डायरेक्टर अमरीश सिंघल और कुमार गौरव, राजकिरण रति अग्निहोत्री, द ग्रेट हीमैन धर्मेंद्र, दीप्ति नेवल, अमरीश पुरी और शैलेश कुमार का एक फिल्म। मेरे प्यारे सुनो, ये उजाला रेडियो है, मैं हूं आपका यारो कया रतन राम दुलारे पांडे। फिर एक बार स्वागत है तहदिल से और शुभ रात्रि आप सभी को हम कहते हैं। आप सभी को फिर एक बार रतन का प्यार भरा नमस्कार और अडापर्स हैं। सरे 6:06 बाकी है और आप सुन रहे हैं प्रोग्राम लाइफ एंड डायरेक्ट यू आर के स्टूडियो रोटरडम से बैक टू द फ्यूचर। अनु मलिक जी का प्रोग्राम आज सजा रहे हैं एंड फोर्थ वीक द लास्ट, और नए महीना सितंबर में एक नया कलाकार या तो अगले मूवी की ओर आपको ले चलते हैं मेरे प्यारे सिनेमालो। तो एक छलान हम लगाएंगे 1986 से जाकर मिलेनियम साल 2000। यार 2000 में रिलीज हुआ मूवी जिसका नाम है जोश का एक गीत जो काफी पॉपुलर है आजकल, जहां देखो ये गीत भी चल रहे हैं। इतने दिनों के बाद सेशन त्रिंद ही आ रहा है और गीत कुछ ऐसा है, काफी रोमांटिक है। और अभी अनजान साहब जी का नगमा आप सभी ने सुने, उनका लिखा हुआ। अब उनकी बेटे जो एक सरताज बादशाह है लिखने में, शायर में, कवि में, सॉन्ग राइटर समीर कुमार या समीर अनजान होना चाहिए, समीर अनजान का लिखा हुआ गीत पेश करने जा रहा हूँ। एक नगमा जो उदित नारायण और अलका याग्निक मिलकर गाएंगे अनु मलिक के साज और संगीत पर। हियर ऑन यू आर

हरे हरे हरे हम तो दिल से हरे। खूबसूरत गीत मेरे प्यारे सुनने वालों, उदित नारायण और अलका याग्निक जी ने मिलकर गीत को गाए हैं, समीर का लिखा हुआ, वो भी अनु मलिक की साज और संगीत पर। 2000 का फिल्म जोश से हमने नगमा को निकाले। जोश एक फिल्म है जिसका डायरेक्टर मंजूर खान और शाहरुख खान ने काम किया है और जिन पर ये गीत पिक्चराइज किया गया है, चंद्रचूड़ सिंह और ऐश्वर्या राय, ये दोनों भी मूवी में काम किया है। शरद कपूर मैं देखता हूँ भी है, शरद सक्सेना और क्या नाम है उसका, बोमन ईरानी, नदीरा जी, पुनीत वशीष और या प्रिया गिल। मेरे प्यारे सुनो, जैसे मैंने कहा कि हर एक घंटे पर आप देश विदेश का समाचार सुनेंगे, सड़क का हालात, मौसम का हाल क्या है और इश्तिहारे भी। और आज 7 बजे के इश्तिहारों के बाद आपको ये मालूम रहे कि मौत की खबरें, मृत्यु समाचार भी पुकारा जाएगा हियर ऑन यू आर, और उसके बाद में यादें भी पेश किया जाएगा, शोक प्रोग्राम यादें मृत्यु समाचार के बाद। मदद इज नॉट अ क्लॉक फन सेफ। फिलहाल तो एक खूबसूरत गीत की ओर आपको फिर एक बार ले जाएंगे, लेकिन हमें वापस जाना पड़ेगा 8 साल या वहां वेर तुरख 1992 1993। फिल्म का नाम लाज साहब और अब की बार गुलशन बावरा जी का लिखा हुआ गीत। गुलशन बावरा जी इतने सारे खूबसूरत गाने इन्होंने लिखा है और उनमें से यकीनन ये भी एक है। एक नगमा वंस अगेन अलका याग्निक, लेकिन अब की बार विद अ टाइगर ऑफ बंगाल कुमार सानू, अनु मलिक के साज और संगीत पर, कि दे दो मुझे दिल। Enjoy मेरे प्यारे जनवालों, this is you are back to the future live from our studio Rotterdam.

दे दो मुझे दिल और ले लो मेरा ये दिल। कुमार सानू और अलका याग्निक की आवाजें। मेरे प्यारे सुनने वालों, गुलशन बावरा जी का लिखा हुआ ये गीत रोमांटिक सॉन्ग दोनों ने मिलकर गाए हैं अन्नू मल्लिक के साथ और संगीत पर 1992 का फिल्म लाज साहब से हमने नगमा को निकाले। सुनील अग्निहोत्री जिसका प्रोड्यूसर डायरेक्टर है और जैकी श्रॉफ, नीलम कोठारी, मुशीन खान, आसरानी साहब जी, भरत कपूर और साईद जाफरी का एक फिल्म। मेरे प्यारे सुनोला, आपको मालूम रहे कि आज मैं हूं, कल भी प्रोग्राम सजाने चले आएंगे। मोरखा नाफन बैने करो कल दोन रख 20 तारीख अगस्त को रात्रि में 8 बजे से 11 बजे पेश करने चले आएंगे प्रोग्राम दिल की आवाज। आज को मैंने प्लेलिस्ट को देखा और मेरे प्यारे सुन वालों, वक्त बहुत कम होता है हमेशा। 3 घंटे में क्या क्या आपको हम सुना पाएंगे, लेकिन फिर भी कोशिश लगातार हम करते हैं द बेस्ट ऑफ द बेस्ट आप तक पेश करने का हमेशा। और कल भी जो प्लेलिस्ट होंगे लाजवाब बेमिसाल प्लेलिस्ट है दिल की आवाज का, तो उम्मीद और आशा करते हैं कि आप भरपूर भरपूर आप सभी मेरा साथ देंगे। नतुलक साथ रख मैंने करो शनिवार 22 तारीख 2020 अगस्त को लोकल प्रोग्राम 5 घंटे लगातार 7 बजे रात्रि से टिल मिडनाइट आप का सेवा हम करेंगे लेकर प्रोग्राम सैटरडे नाइट फीवर। अगले मूवी का नाम मेरे प्यारे सुनने वालों, एक फिल्म जो 2006 का है, तो एक छलान फिर एक बार हम लगाएंगे 1992 से 14 साल 2006 फिल्म का नाम जाने मन। अब की बार गुलजार साहब जी का लिखा हुआ एक दर्द भरा गीत पेश करने जा रहा हूं जो अन्नू मल्लिक के साज और संगीत पर मिलकर गाएंगे नगमा सुसैन डिमेलो और सोनू निगम। ये नगमा मेरे प्यारे सुनने वालों, सौ दर्द है सौ

सोनू निगम और सुसैन डिमेलो मेरे प्यारे सुनने वालों, गुलजार साहब जी का लिखा हुआ डर भरा नगमा दोनों ने मिलकर गाए हैं। अनु मल्लिक की साज और संगीत पर फिल्म का नाम जाने मन, और ये फिल्म मेरे प्यारे सुनने वालों 2006 का है। सुरेश कुंडर, हाँ जी सुरेश कुंडर जी, इनका डायरेक्ट किया हुआ मूवी, प्रोड्यूसर सज्जित नाडियावाला, अक्षय कुमार, सलमान खान, प्रीति सिंता, अनुपम खेर, जावेद शेख और क्या नाम है उसका, नीदर खाइक नियुपकोम नहीं, लेकिन इन सभी ने, जिसका नाम हमने कहे हैं, इन सभी ने ये मूवी में काम किया है। मेरे प्यारे सिनोला, आज पांचवी बार हम सजा रहे हैं, बना रहे हैं प्रोग्राम बैक टू द फ्यूचर, और वो भी अनु मलिक जी का पांचवीं प्रोग्राम हम सजा रहे हैं। 426 अगस्त, जो इस महीने का आखिरी बुधवार है, तो अनु मलिक जी का भी आखिरी प्रोग्राम दसेस्ट एंड लास्ट हम पेश करेंगे, और नए महीना सितंबर में तनखा व खून वेयरफेयर में न्यू आर्टिस्ट, और कौन होंगे फिलहाल तुम कभी बताते नहीं, दाते संफरा सिंह, लेकिन उनका प्रोग्राम हमने कभी पहले नहीं बनाए इस रूप में, ये मैं कह सकता हूं। ओके मेरे प्यारे सुनो, मैं देखता हूं घड़ी की तरफ, तो वक्त कुछ ऐसे है, और गाने जो हम पेश करने जाएंगे, अब की ये गीत जो है कुछ काफी लंबा चौड़ा भी है, तो मतलब ये एक तो इस घंटे का आखिरी गीत पेश करता हूं, उसके बाद इश्तिहारे की ओर, 7 बजे की इश्तिहारे की ओर हम बढ़ चलेंगे। देश विदेश का समाचार, मौसम का हालात, जैसे मैंने कहा सभी आपको कहा जाएगा, सड़क का क्या हाल भी है, और उसके बाद मैं मेरे प्यारे सुनने वालों अफसोस के साथ उजाला रेडियो के जरिए भी मृत्यु समाचार, मौत की खबरें, बड़े तफन ओवरलाइड पुकारा जाएगा हियर ऑन यूआर, और सूचनाओं के बाद, मृत्यु समाचार के बाद भी शोक प्रोग्राम यादें भी पेश किया जाएगा। दतवल से हर दत तालमाल हिल फील इस बेलकार, तो सेवा में फिर हम हाजिर रहेंगे राउंड 4:15, इट्स ओवर 4:15, अख बेनिकर वीर मैट बैक टू द फ्यूचर। आखिरी गीत जो पेश करने जा रहा हूं मेरे प्यारे सनोलो, इस घंटे का फिल्म नजायज से हम निकालेंगे, और या तरीखन बैठ, तो ये गीत एक बारिश वाला गीत है, इंदवर का लिखा हुआ, अनु मल्लिक की साज और संगीत पर मिलकर गीत गाएंगे कुमार सानू और रूप कुमार राठौर, फिल्म का डायरेक्टर महेश भट्ट, अजय देवगन और जूही चावला, नाजीरुद्दीन शाह, दीपक तिजोरी का एक फिल्म। तो मेरे प्यारे सुनो ना, आल बरिख्त सूर आप सभी से फिर हम जरूर मिलेंगे।

कल आया था वो आज गया, और जो आज आया है वो कल जाएगा। इसी के साथ सुनिए मृत्यु समाचार।

खुशी के साथ गमी है, पैदाइश के साथ मौत। उजाला रेडियो का प्रोग्राम में मृत्यु समाचार आप सुनिए। अम्स्टरडम से समस्त परिवार, लड़कन हीरा लाल बहुत दुख के साथ ये सूचना को कर रहे हैं कि बीते हुए बीफे को 87 साल की आयु में ज़ीफ़नन तख्तख यार औत। पत्नी श्रीमती मारी हीरालाल उदयराम का पति लड़कन जूलियन और परिवार, ग्लेन और परिवार, नालिनी और परिवार, इरेन और परिवार, हैंक और परिवार, जिम और परिवार, शारदा और परिवार, जॉय और परिवार, योसेफ और परिवार, जेरी और परिवार, शर्मिला और परिवार और स्वर्गीय जॉन और परिवार के पिता अम्स्टरडम का रहने वाला श्रीमान योसेफ चंद्रभान हीरालाल की मृत्यु अम्स्टरडम में हो गई है। इन्हें लोग जीवित में भान के नाम से पहचानते और पुकारते थे। सूरीनाम में पहले लेली दौरप सिदोरे जोवेक देसा का रहने वाला था। अम्स्टरडम से परिवार हीरालाल बहुत दुख के साथ ये सूचना को कर रहे हैं कि बीते हुए बीफे को 87 साल की आयु में ज़ीफ़नन तख्तख यार औत। पत्नी श्रीमती मारी हीरालाल उदयराम का पति, सभी लड़कन जूलियन, ग्लेन, नालिनी, इरेन, हैंक, जिम, शारदा, जॉय, योसेफ, जेरी, शर्मिला और स्वर्गीय जॉन और परिवार, इन लोगों के पिता अम्स्टरडम का रहने वाला श्रीमान योसेफ चंद्रभान हीरालाल की मृत्यु अम्स्टरडम में हो गई है। भान के नाम से लोग इन्हें पहचानते और पुकारते थे। सूरीनाम में पहले सिदोरे जोवेक देसा लीली दौरप का रहने वाला जो था। अर्थी से विदाई आप ले सकेंगे आज बुध के रात में 7 बजे से 8 बजे तक ओला जोयत के मुर्दालय फ्रेतरूस कसराते 91 अम्स्टरडम जोयत में। अर्थी के दाह क्रिया कल बीफे के दिन में 4 बजे मोरखन दोंदरदख फिर किए जाएंगे। वेस्ट खार्द क्रिमाटोरियम ओकमेरवेख 275 ओकमेरवेख 275 अम्स्टरडम ओस्टडॉर्प में। निवास स्थान पर बैठक नहीं किए जाते हैं। और जानकारी के लिए तारका नंबर है 06 28 41 71 06 28 41 91 71। सुनने वालों से निवेदन है सूचना को और आगे तक पहुंचा देने के लिए उजाला रेडियो परिवार हीरालाल के दुख में शामिल है।

0: कल हो।
1: और मृत्यु समाचार प्रोग्राम में आप सुनिए हौतन्स के रहने वाले समस्त परिवार महादेव मिसीर बहुत दुख के साथ ये सूचना को कर रहे हैं कि बीते हुए बीफे को 72 साल की आयु में त्वेयन जीवन तखियार औत पत्नी एल्फी का पति लड़कन किशन विकास अमरेश और करिश्मा के पिता मीरांडा लिंसे शकीता और राम के ससुर जायदा जनायरो रोशन और नीलन के आजा। हौतन का रहने वाला श्रीमान चंद्रदत्त महादेव मिसीर की मृत्यु निवखेन के सेंट आंतोनियो चिकन हाउस में हो गई है। हौतन से समस्त परिवार महादेव मिसीर बहुत दुख के साथ ये सूचना को कर रहे हैं कि बीते हुए बीफे को 72 साल की आयु में त्वेयन जीवन तखियार औत पत्नी एल्फी का पति लड़कन किशन विकास अमरेश और करिश्मा के पिता मीरांडा ब्लिंसी शकीता और राम के ससुर जायदा जनायरो रोशन और नीलन के आजा। हौतन का रहने वाला श्रीमान चंद्रदत्त महादेव मिसीर के मृत्यु निवखेन के सेंट आंतोनियो चिकन हाउस में हो गई है। और अर्थी के दाह क्रिया आने वाले शुक्रवार के दिन में 4 बजे फ्रेदा खानस्तांद फिर उर किए जाएंगे दांगलोबेक क्रीमाटोरियम और यह फ्लोरिडा ड्रीव नंबर 7 उत्तराखंड ओवर फेख्त में। सुनने वालों से निवेदन है सूचना को और आगे तक पहुंचा देने के लिए उजाला रेडियो के साथ आखिरी सफर फरसोरखिंग परिवार महादेव मिसीर के दुख में शामिल है।

0: देश हूँ।
1: और मृत्यु समाचार को आप सुनिए। अलमेरा के रहने वाले परिवार प्यारे बहुत दुख के साथ ये सूचना को कर रहे हैं कि कल मंगलवार को 91 साल की आयु में इन निहंत ख्यार औत लड़कन इंग्रित जिन बेटा और केत प्यारे के माँ सभी लड़कन के आजी नानी पर आजी और पर नानी अम्स्टरडम ज़ुइटोस्ट एफियन हेनरियटे रोलांड होल्स्ट हाउस की रहने वाली विधवा जगदेई प्यारे रामदीन की मृत्यु हो गई है। अलमेरे से लड़कन प्यारे बहुत दुख के साथ ये सूचना को कर रहे हैं। कल मंगलवार को 91 साल की आयु में इन निहंत ख्यार औत लड़कन इंग्रित जेन बेटा और केत प्यारे के माँ सभी लड़कन के आजी नानी पर आजी और पर नानी अम्स्टरडम ज़ुइटोस्ट कॉर्टफोर्ट एफियन हेनरियटे रोलांड होल्स्ट हाउस की रहने वाली विधवा जगदेई प्यारे रामदीन की मृत्यु हो गई है। अर्थी के दाह क्रिया आने वाले शुक्रवार के दिन में 2:30 बजे फ्रेदा खानस्तांद हलफदरी किए जाएंगे वेस्ट खार्द क्रीमाटोरियम ओक मेरवेख 275 ओक मेरवेख 275 अम्स्टरडम ओस्टडॉर्प में। और जानकारी के लिए तार का नंबर है 06-1376-3108 सुनने वालों से निवेदन है सूचना को और आगे तक पहुंचा देने के लिए उजाला रेडियो परिवार प्यारे और परिवार रामदीन के दुख में शामिल है।

और मृत्यु समाचार प्रोग्राम में आप सुनिए अम्स्टरडम से लड़कन बंसी और परिवार बहुत दुख के साथ ये सूचना को कर रहे हैं कि बीते हुए इतवार को 85 साल के आयु में फैफन तख्त खियार औत स्वर्गीय श्रीमान हरिदेव बंसी के विधवा लड़कन सीता सेवराज स्वर्गीय उर्मिला देवी मोहाबू इंदिरा कुशल मीना चक्कौरी स्वर्गीय अशोक बंसी और श्रीमान सुनील बंसी के मां दो पतो दो दामाद और दो स्वर्गीय दामाद के सास 14 लड़कन और एक स्वर्गीय लड़का के नानी और आजी और 15 लड़कन के पर नानी और पर आजी अम्स्टरडम जोइटोस की रहने वाली विधवा जयवंती बंसी रामफल की मृत्यु अम्स्टरडम जोइटोस में हो गई है। पहले पारामारिबो मुंदरवेह के निवासी थी। अम्स्टरडम से लड़कन बंसी और परिवार बहुत दुख के साथ ये सूचना को कर रहे हैं कि बीते इतवार को 85 साल की आयु में फैफन तख्त खियार औत स्वर्गीय श्रीमान हरिदेव बंसी की विधवा लड़कन सीता सेवराज स्वर्गीय उर्मिला देवी महाबू इंदिरा कुशल मीना शकौरी स्वर्गीय अशोक बंसी और बेटा श्रीमान सुनील बंसी के मां दो पतो दो दामाद और दो स्वर्गीय दामाद के सास 14 लड़कन और एक स्वर्गीय लड़का के नानी और आजी और 15 लड़कन के परनानी और पर आजी अम्स्टरडम जोइटोस की रहने वाली विधवा जयवंती बंसी रामफल की मृत्यु अम्स्टरडम जोइटोस में हो गई है। पारामारिबो में पहले मुंदरवेह के निवासी थी। अर्थी से विदाई को आप ले सकेंगे कल बीफे के रात में 7 बजे से 8 बजे तक उइटवार्ड सेंट्रम वेस्खार्ड के मुर्दालय ओक मेरवेह 275 अम्स्टरडम ओस्टडॉर्फ में और अर्थी के दाह क्रिया आने वाले शुक्रवार के दिन में 12 बजे फ्रेडा खानस्टांड 12 किए जाएंगे वेस्खार्ड क्रिमाटोरियम ओक मेरवेह 275 अम्स्टरडम ओस्टडॉर्फ में। निवास स्थान पर बैठक नहीं किए जाते हैं। सुनने वालों से निवेदन है सूचना को और आगे तक पहुंचा देने के लिए उजाला रेडियो के साथ आखिरी सफर उइटवार्ड फुरजोरखिंग समस्त परिवार बंसी और परिवार रामफल के दुख में शामिल है।

उजाला रेडियो का प्रोग्राम में और मृत्यु समाचार को आप सुनिए। अम्स्टर्डम से परिवार भोला बहुत दुख के साथ ये सूचना को कर रहे हैं कि बीते हुए शनिचर को 87 साल के आयु में ज़ेफ़रन तख्तख यार औद पत्नी श्रीमती बेत्सी भोला का पति लड़कन एरविन सुदेश मीला और सुचित्र के पिता रोसिला नॉर्मा स्टेफन और केनेथ के ससुर 7 लड़कन के नाना और आजा और 4 लड़कन के परनाना और पर आजा अम्स्टर्डम जोइटोस वोनग्रुप आनंद ज्योति का रहने वाला श्रीमान आंद्रे भोला के मृत्यु अम्स्टर्डम में हो गई है। पारामारिबो में कॉर्नेलिया स्ट्रैट का रहने वाला था। अम्स्टर्डम से परिवार लड़कन भोला बहुत दुख के साथ ये सूचना को कर रहे हैं कि बीते हुए शनिचर को 87 साल की आयु में ज़ेफ़रन तख्तख यार औद पत्नी श्रीमती बेत्सी भोला का पति लड़कन एरविन सुदेश मीला और सुचित्रा के पिता रोसिला नॉर्मा स्टेफन और केनेथ के ससुर 7 लड़कन के नाना और आजा और 4 लड़कन के परनाना और पर आजा अम्स्टर्डम जोइटोस वोनग्रुप आनंद ज्योति का रहने वाला श्रीमान आंद्रे भोला के मृत्यु अम्स्टर्डम में हो गई है। पहले पारामारिबो कॉर्नेलिया स्ट्रैट का रहने वाला था। अर्थी से विदाई लेने के मौका है आने वाले शुक्रवार के रात में 7:15 से 7:15 तक फ्रेडाखाफन फन क्वर्त ओफर जीवन तो क्वर्त ओफर आख वेस्खार्ड क्रिमाटोरियम ओक मिरवेक 275 अम्स्टर्डम ओस्टडॉर्फ में और अर्थी के दाह क्रिया आने वाले शनिचर के दिन में 1 से जातर दखास्तांद 1 किए जाएंगे वेस्खार्ड क्रिमाटोरियम ओक मिरवेक 275 अम्स्टर्डम ओस्टडॉर्फ में। सुनने वालों से निवेदन है सूचना को और आगे तक पहुंचा देने के लिए उजाला रेडियो समस्त परिवार भोला के दुख में शामिल है।

उजाला रेडियो है ये, और यहीं से शोक प्रोग्राम यादें आप सुनेंगे। सीएच आत्मा की आवाज में गीत आप सुनेंगे, और ये गीत पेश है हौतिन के रहने वाले परिवार महादेव मिसीर, पत्नी अल्फी की तरफ से प्यारा स्वर्गीय पति लड़कन किशन, विकास, अमरेश और करिश्मा महादेव मिसीर की तरफ से स्वर्गीय पिता मीरांदा, लिंसे, शकीता और राम के तरफ से स्वर्गीय ससुर जायदा, जेनायरो रोशन और नीलन के तरफ से स्वर्गीय आजा, स्वर्गीय श्री चंद्रदत्त महादेव मिसीर की याद में 72 साल की आयु में इनकर मृत्यु जो बीते हुए बीफे को हो गई है, इन्हीं की याद में ये गीत पेश है।

कहने को बहुत कुछ था मगर कह नहीं पाए। और गीत भी आप सुने सी चांतमा की आवाज में, जो पेश की गई पत्नी श्रीमती अल्फी की तरफ से स्वर्गीय पति लड़कन किशन, विकास, अमरेश और करिश्मा महादेव मिसीर की तरफ से स्वर्गीय पिता मिरांडा, लिंसी, शकीता और राम की तरफ से स्वर्गीय ससुर जायदा, चेन्नईरो रोशन और नीलन के तरफ से स्वर्गीय आजा, स्वर्गीय श्री चंद्रदत्त महादेव मिसीर की याद में इनकर मृत्यु 72 साल की आयु में बीते हुए बीफे को हो गई है। इन्हीं की याद में गीत पेश की गई है।

और शोक प्रोग्राम यादें जारी करते हुए सुनने वालों एक और गीत आप लोग अब सुनेंगे और ये गीत पेश है सभी लड़कन की तरफ से अपनी प्यारी स्वर्गीय नानी आजी पर नानी और पर आजी स्वर्गीय विधवा जयवंती बंसी रामफल की याद में इनकर मृत्यु हुए है बीते हुए इतवार के सुबह 85 साल की आयु में फैफन तख्तख यार औत तो इन्हीं की याद में प्रोग्राम में गीत आप सुनेंगे

आप जो सुने तो ये पेश की गई है सभी लड़कन के तरफ से अपने बहुत ही प्यारी स्वर्गीय नानी आजी परनानी और पराजी स्वर्गीय विधवा जयवंती बंसी रामफल की याद में 85 साल की आयु में बीते इतवार की सुबह इनकर मृत्यु हो गई है। तो इन्हीं की याद में नानी आजी परनानी पराजी की याद में गीत पेश की गई है। और इस शोक प्रोग्राम में एक और गीत है सुनने वालों, और ये गीत पेश है सभी लड़कन सीता इंद्रा मीना और सुनील बंसी की तरफ से अपने प्यारी स्वर्गीय माँ दो पतों की तरफ से स्वर्गीय सासू जी स्वर्गीय विधवा जयवंती बंसी रामफल की याद में इनकर मृत्यु 85 साल की आयु में बीते इतवार के सुबह अम्स्टरडम ज़ुइटोस्ट में हो गई है। तो इन्हीं की याद में ये गीत प्रोग्राम में पेश है।

माँ मुझे अपने आंचल में छुपा ले कि और मेरा कोई नहीं। गीत पेश की गई ये लड़कन सीता, इंदिरा, मीना और सुनील बंसी की तरफ से अपनी प्यारी स्वर्गीय माँ, दो पतों की तरफ से स्वर्गीय सासू माँ, स्वर्गीय विधवा जयवंती बंसी रामफल की याद में 85 साल की आयु में इनकर मृत्यु बीते इतवार को अम्स्टर्डम ज़ुइटोस्ट में हो गई है। इन्हीं की याद में गीत पेश की गई है। सुनने वालों, यहीं तक आप सुने उजाला रेडियो पर शोक प्रोग्राम यादें।

मेरे प्यारे सुनो वालों, वेलकम बैक। मैं हूं रतन राम दुलारे पांडे और अभी तक आप चून किए हुए हैं आप ही का मनचाहा और फेवरेट स्टेशन उजाला रेडियो पर। मुझसे पहले बहुत सारे खबरें आप सभी ने सुने हैं, मौत की खबरें, मृत्यु समाचार और उसके बाद में शोक प्रोग्राम यादें हियर ऑन यू आर। सभी दुखी प्राणियों को हम यही कहेंगे कि बस आप ऊपर वाला का नाम लीजिएगा और उनसे प्रार्थना है कि आप सभी के शहन की शक्ति के लिए वह आप सभी को टारगेट दे। मेरे प्यारे सुनो, वक्त तो बहुत ही कम है इस घंटे का जो बचा है मेरे हिस्से का ये प्रोग्राम में, तो मैं सोचता हूं चलो एक गीत फिर भी आपको हम सुना दें। तो हमारी इस गीत के बाद बढ़ चलेंगे 8 बजे के ब्रेक की ओर, और 8 बजे के ब्रेक के बाद फिर आप सभी से हम जरूर से जरूर मिलेंगे। हमारे हिस्से बैक टू द फ्यूचर का आखिरी हिस्से होंगे और अनु मलिक जी का प्रोग्राम हम सजा रहे हैं मेरे प्यारे सुनने वालों। और कुछ हफ्तों के लिए प्रोग्राम हमने सजाए हैं, आज 5वें प्रोग्राम जो है सेवा में पेश कर रहा हूं। और अगले हफ्ते अनु मलिक जी का आखिरी भी प्रोग्राम हम पेश करेंगे। मैं देखता हूं एक गीत हमने तैयार करके रखा है, फैज अनवर जी इनका हाथों से लिखा हुआ नगमा जो हम निकालेंगे, फिल्म जिसका नाम है सुरक्षा, सुरक्षा नितवा मिथुन। ये सुरक्षा 1995 का है, नहीं है 3-5 नहीं है। अनु मलिक जी के साज और संगीत पर एक नगमा मिलकर गाएंगे उदित नारायण, अभिजीत भट्टाचार्य और अलीशा चिनाय। मेरे प्यारे सुनने वालों, ओ मेरे सनम गीत का बोल है, सुरक्षा 1995 का ये जो फिल्म है, डायरेक्टर राजू मनावी और सैफ अली खान, आदित्य पंचोली, दिव्या दत्ता, शिबा, सुनील शेट्टी, कादर खान का एक फिल्म। तो इसके बाद ब्रेक मेरे प्यारे सुनो, ब्रेक के बाद आप सभी से फिर हम जरूर मिलेंगे हियर ऑन यू आर।

नींद उड़ रही है, चैन खो रहा है, ऐसे ना मुझे देखो, प्यार हो रहा है। अलका याग्निक और कुमार सानू की आवाजें, मेरी प्यारी सुनो, और समीर का लिखा हुआ ये रोमांटिक सॉन्ग दोनों ने मिलकर गाए हैं, और वो भी जिसका प्रोग्राम हम सजा रहे हैं आज पांचवीं बार, अन्नू मलिक जी संगीतकार। मेरे प्यारे सुनने वालों, कुछ कठी कुछ मीठी फिल्म का नाम, और ये फिल्म 2001 का है, राहुल रवेल जी ने डायरेक्ट किया है, और जिन पर ये गीत ही पिक्चराइज किया गया है मूवी में, सुनील शेट्टी और काजोल। इन दोनों के अलावा मैं देखता हूँ फिल्म में ऋषि कपूर भी है, रति अग्निहोत्री, रजाक खान, दिनेश हिंगू और पूजा बात्रा। मेरे प्यारे सुनो वालों, ये उजाला रेडियो है, और धीरे धीरे कुछ सेकंड्स के बाद होंगे 17 मिनट जो बीत चुके हैं 8 बजकर। ये है आप ही का मनचाहत और फेवरेट स्टेशन उजाला रेडियो, और एकदम लाइव एंड डायरेक्ट QR के स्टूडियो रतनाम से पेश कर रहा हूं प्रोग्राम बैक टू द फ्यूचर। आज पांचवी बार हम सजा रहे हैं, बना रहे हैं प्रोग्राम अन्नू मलिक जी। इन्होंने बहुत सारे मूवीज में बहुत ही सारे खूबसूरत गानों के लिए अपना म्यूजिक दी है, कंपोज की है। तो आप सुन रहे हैं किस तरह के नगमाएं, और अगले हफ्ते अन्नू जी का आखिरी प्रोग्राम हम सजाएंगे हियर ऑन यूआर। मेरे प्यारे सुनने वालों, व्हाट्सएप पर कुछ लोगों ने भी ऐप किए हैं, जैसे कि अवसलफीन का सुशीला, चंद्रिका सिंह जी और उनकी बेटी मालती जी, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू लिवेल आपके ऐप के लिए, और बेहद खुशी है हम कि आप सभी चून किए हुए हैं, मालती जी और सुशीला जी, थैंक यू लिवेल। और भी सुन रहे हैं प्रोग्राम इल्स रामदयाल जी, आइडन हेल्डर, धन्यवाद इल्स जी आपके ऐप के लिए, और आप बिनकोर जा रहे हैं फकांसी से हमारे प्रिय मॉरिशियस की ओर, मैं समझता हूं कि अगर आप वहां जाएंगे तो आप भरपूर एंजॉय करेंगे, बहुत खूबसूरत है मॉरिशियस, एंजॉय। इफोनोडोलॉजी दनाख शहर में भी चून किए हुए हैं इफोनो, थैंक यू वेल आपके ऐप के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। और दूर वहां ख्रोनिंग में भी हमेशा जब भी मौका मिलता है चून करते हैं, और ऐप भी करते हैं हमारे प्रिय बेटी जी, थैंक यू वेल बेटी जी, बहुत बहुत धन्यवाद चून करने के लिए और ऐप करने के लिए। मार्स ब्रुक में भी हेरेंद्रू और चित्रा जी प्रोग्राम से जुड़े हुए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद चित्रा जी, एंड यूली खान बिन कोर्टोक लेकर नार मोय फकांसी माक, और नाट्योलक हिलफुल स्टेरक्ट मेथड फलीस, लेकिन चित्रा जी, हरेंद्र जी, आपको बधाइयां शुभकामना भी हम कहेंगे, क्योंकि कल जो आपके माता श्री का जन्मदिन जो है, माकरन मोय रखफान एन फरवेन हारखूत। हार्लेम शहर का आइलिन जी, आपने भी ऐप किए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आइलिन जी, आल्टेड हेल लीफ आपके मेल जो है या ऐप है, ऐप, दिल से धन्यवाद आइलिन जी। मफराव एन मनेर बिहारी, हाँ ही लमालो फ्लाट बेनिक 220 फॉल्ट वैकेंसी बीत गया आप भरपूर सेवा में, आप सभी का हम रहेंगे तीनों दिन, वुंसदाग डोनरदाग सैटरडाग, एंड दैट गान वी सो डून नोग सेकर 8 वीक लंग, उसके बाद में क्या होंगे
तो फिर देखा जाएगा। धन्यवाद आप कैप के लिए और चून करने के लिए। सत्या जी तमसनाम, आपको भी धन्यवाद। धन्यवाद हम कहेंगे आप कैप के लिए, आप ही हमेशा भी सुनते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं, दिल से धन्यवाद सत्या जी। और जो भी हमेशा सुनते हैं रतनाम श्रीनाम में, प्रिंसेस राज दंकीवेल आप कैप के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आप कैप के लिए और चून करने के लिए, सपोर्ट करने के लिए। और एक मेल भी आए हैं बहुत दूर, जहां हमारी इस देश में रात्रि होने को आए हैं, कुछ घंटों के बाद हम यहां सोने को जाएंगे, वहां तो अभी सब जागे हुए हैं और वहां तो अभी सवेरे हैं। वैंकूवर कनाडा में भी प्रोग्राम से जुड़े हुए हैं रतनाम का भैया राजेश सिंह, आपके ऐप के लिए बहुत बहुत डंकीवेल धन्यवाद। फनोइथ वैंकूवर, आप इतनी दूर जाकर भी चून किए हुए हैं उजाला रेडियो पर, दिल की गहराइयों से धन्यवाद। और आपके साथ साथ भी सुन रहे हैं प्रोग्राम सुशील जी और जॉयसलीन जी, तो सुशील और जॉयसलीन जी को भी स्वागत हम करते हैं और धन्यवाद कहते हैं चून करने के लिए। एंजॉय वैंकूवर एंड एंजॉय यू आर। मेरे प्यारे सुनने वालों, एक गीत की ओर आपको ले चलेंगे, रानी मलिक जी का लिखा हुआ, विनोद राठौड़ की आवाज और संगीतकार ऑफ कोर्स, जिसका प्रोग्राम सजा रहा हूं, अनु मलिक जी। फिल्म का नाम बाजीगर, इतनी 1993, छुपाना भी नहीं आता।

नहीं आता और मिटाना भी नहीं आता। विनोद राठौर की आवाज मेरे प्यारे सुनो लो, और रानी मलिक जी का लिखा हुआ गीत विनोद जी ने गाकर सुनाए हैं। अनु मल्लिक के साज और संगीत पर मेरे प्यारे सुनने वालों, बाजीगर फिल्म का नाम, बाजीगर फिल्म 1993 का है, निहत इंद्री निहत। फिल्म का जो डायरेक्टर है ये दो भाइयां अब्बास और मुस्तान, और वो भी बर्मा वाला शाहरुख खान, काजोल, शिल्पा शेट्टी, राखी, दलीप तहिल और कौन है जरा मैं देखूं, जरा मैं झांकूं, जॉनी लेवर, इन सभी का एक फिल्म। अमस्टरडम सेंट्रम में भी प्रोग्राम सुन रहे हैं, और हमें मुझे मालूम है आपने कभी कहा है और शायद कई बार कहे होंगे कि आप 24 घंटे 7 दिन लगातार उजाला रेडियो पर चून किए करते हैं, और हम बात कर रहे हैं प्रभा जी एट अमस्टरडम सेंट्रम, डंकीवेल आपके ऐप के लिए बेहद खुशी है हम कि आप इतनी जबरदस्त फैन है उजाला रेडियो का। दिल की गहराइयों से आपको धन्यवाद हम कहते हैं। आप भरपूर एंजॉय करें और मजा लें, और मजा भी ले रहे हैं जो हमारे इस शहर रोहतांग में आए हैं, मुझसे मिला नहीं और वापस जा रहे हैं अमस्टरडम की ओर। बड़े भैया नरेश दिहाल, तो नरेश दिहाल डंकीवेल आप कैब के लिए कभी कभी आया करो, कुछ खाया करो, कुछ पिया करो, कुछ बातचीत हम किया करें, तू जाने तो मामला कैसा है कि आप तो निकल पड़े रोहतांग से। अमस्टरडम, हैव अ सेफ ड्राइव और एंजॉय। गाने खूबसूरत हो, आप मजा लें, लेकिन आपका फोकस रास्ते पे होना चाहिए, तू जाने है तो। मेरे प्यारे सुनने वालों, एक बहुत ही खूबसूरत रोमांटिक सॉन्ग की ओर आपको ले चल रहे हैं, और गीत कुछ ऐसा है अनवर सागर जी ने लिखा, इतनी रोमांटिक सॉन्ग, और अनु मल्लिक की साज और संगीत पर द टाइगर ऑफ बंगाल कुमार सानू और अनुराधा पौडवाल जी मिलकर गीत गाएंगे कि दो दिन तो क्या ना गुजरेंगे, दो पल तेरे बगैर हो जाऊंगा प्यार में पागल, मैं तो तेरे बगैर। फिल्म का नाम आ गले लग जा, और ये फिल्म 1994 का है, नीहतीन फिर नहीं।

दो दिन तो क्या ना गुजरेगी, दो पल तेरे बगैर हो जाऊंगा प्यार में पागल, मैं तो तेरे बगैर। बहुत ही खूबसूरत रोमांटिक सॉन्ग मेरे प्यारे सुनने वालों, अनवर सागर जी का लिखा हुआ और मिलकर जो गाए हैं अनुराधा पौडवाल जी और द टाइगर ऑफ बंगाल कुमार सानू, और वो भी अनु मल्लिक की साज और संगीत पर। अनु मल्लिक जी का प्रोग्राम हम सजा रहे हैं आज मेरे प्यारे सुनने वालों पांचवी बार, N401 26 तारीख अगस्त को जो इस महीने का आखिरी बुधवार होंगे, अनु मल्लिक जी का आखिरी भी प्रोग्राम हम पेश करेंगे। ये था फिल्म आ गले लग जा, और फिल्म 1994 का है, नीहतीन फिर नीहतक हमीत अली जी ने डायरेक्ट किया है, जुगल हंसराज और उर्मिला मटुमकर का एक फिल्म जिसमें रजा मुराद भी है, परेश रावल, गुलशन ग्रोवर, रंजीत, रीमा लागू, अजीत और रुपेश कुमार। नरेश दिहाल जी आप जा रहे हैं रोटरडम से आम्स्टरडम, और आपके साथ हमने तो उन्हें खुरुत करना भूल गया, आपके साथ भी है शांति चांगुर जी, तो शांति जी को भी मेरा शुभकामना और दंकेवाल चून करने के लिए। उम्मीद और आशा करते हैं कि शांति जी आप भी मजा ले रहे होंगे। सेफ ड्राइव बैक टू होम, और आईफी जहांगीर एट आम्स्टरडम आपको भी थैंक यू वेल, शुक्रिया धन्यवाद हम कहना चाहेंगे चून करने के लिए, आप कैब के लिए। और कभी कभी हो जाता है मिस्टेक, तू जाने तो आईफी जी एंजॉय एंड थैंक यू वेल, और खराब ये सब सुनता है तू जाने तो। हमें आपसे शिकायत ना हुई और ना ही होगी कभी, गीत का बोल है और समीर ने लिखा, ये भी रोमांटिक सॉन्ग में गिना जाता है। सोनू निगम और अलका याग्निक जी मिलकर गीत गाएंगे अनु मल्लिक की साज और संगीत पर। 2004 का मूवी फिल्म आन से हम नगमा निकालेंगे इसी तरह से और सेवा में पेश करेंगे। दिस इज यूआर हर एक इंफॉर्मेशन जानकारी के वास्ते चेक www.pintuchala.net।

ब्यूटीफुल रोमांटिक सॉन्ग मेरे प्यारे सुनने वालों, हमें आपसे शिकायत ना हुई ना ही होगी। सोनू निगम और अलका याग्निक जी की आवाजें, समीर का लिखा हुआ, और दोनों ने खूबसूरत रोमांटिक सॉन्ग मिलकर गाए हैं। अनु मलिक जिसका प्रोग्राम हम सजा रहे हैं, अनु मलिक के साथ और संगीत पर। आन फिल्म का नाम मेरे प्यारे सुनने वालों, आन एक फिल्म है 2004 का, 2004। मधुर भंडाकर ऑफ ट्वेल मुतिक सेख खूतोर, मधुर भंडारकर, हाँ भंडारकर इनका डायरेक्ट क्या हुआ मूवी। शटगन सूत्रगन जीना, अक्षय कुमार, सुनील शेट्टी, परेश रवेल, रवीना टंडन, लारा दत्ता, प्रीति जहांगी, जैकी श्रॉफ, मनोज जोशी, इरफान खान, राहुल देव, राजपाल यादव और बहुत सारे लोग ये मूवी में काम किए हैं। मेरे प्यारे सुनो लो, मैं देखता हूँ घड़ी की तरफ तो वक्त कुछ इस तरह से आँच निकल गया, क्या बताऊँ, गाने हैं इतने ज़्यादा और वक्त आज मिला है बहुत कम। और कारण ये है कि प्रोग्राम में 7 से 8 बजे बहुत सारे मृत्यु समाचार थे और शोक समाचार। मारत मांगनी है जो आज बचे हैं पॉपुलर सॉन्ग्स, खूबसूरत नगमाएं ले चलेंगे अगले हफ्ते की ओर, और कोशिश करूंगा एक धमाकेदार प्रोग्राम अगले हफ्ते बनाने का जो आखिरी होंगे अनु मलिक जी का। उम्मीद और आशा करते हैं कि आज का ये प्रोग्राम जो हमने सजाए हैं बनाए हैं आप सभी ने भरपूर भी पसंद की है, एंजॉय की है नगमाओं के साथ। अगले हफ्ते जैसे मैंने कहा अनु मलिक जी का आखिरी प्रोग्राम एनतुलो, हम कल आप सभी से फिर मिलेंगे मोरखनावंत दान बैनकर में दिल की आवाज़ रात्रि में 8 से 11 बजे विद ब्यूटीफुल रोमांटिक सॉन्ग्स, और उसके साथ साथ कुछ दर्द भरे नगमाएं जो प्लेलिस्ट में हमेशा शामिल रहते हैं। शनिवार को भी सेवा करने आएंगे यहाँ स्टूडियो रोहतांग से 7 बजे रात्रि से टिल मिडनाइट लेकर लोकल प्रोग्राम सैटरडे नाइट फीवर। तो मेरे प्यारे सुनो वालों, आज्ञा लेने से पहले एक गीत आपको हम सुनाएंगे, अभिमन्यू जो एक फिल्म है 1989 का, निहती निहन तख्त, अलका याग्निक, अमित कुमार, अनजान का लिखा हुआ रोमांटिक सॉन्ग दोनों मिलकर गाएंगे अनु मलिक के साथ और संगीत पर। कि चांदनी रात है चारपाई छूटी पाठ रही है, ये फिल्म महेश भज्जी का डायरेक्ट किया हुआ है और अनीता राज, पूनम ढिलो, किमी काटकर, प्रेम चोपड़ा, शक्ति कपूर और अनिल कपूर का एक फिल्म। मेरे प्यारे सुनोलो, रहा फूल तो फिर खिलेंगे, और रहा ये खूबसूरत जिंदगी तो हम जरूर से जरूर फिर मिलेंगे। सभी को रतन का प्यार भरा नमस्कार और खुदा हाफिज़। टेक केयर और रिमेंबर आई लव यू ऑल।

हैं बीनू कोटरावर, तोर विवाह होने वाले हैं, तोर शादी होने वाले हैं, सुनवालो तो दीजिए आप फरमाइश ऑफ उजाला रेडियो 15 फरमाइश 15 आवाज फॉर मोर 100 यूरो ऑफ उजाला रेडियो। दिस खाई बीनू कोटरावर, तोर विवाह होने वाले हैं, तोर शादी होने वाला है, नेम कॉन्टैक्ट कॉप मैट उजाला रेडियो, ईमेल info@ujala.nl 15 आवाज फॉर मोर 100 यूरो ऑफ उजाला रेडियो।

उजाला रेडियो पर संगीत का सफर जारी है। उजाला के ऑल टाइम फेवरेट्स जो हर दिल को खुश कर देते हैं, सुनिए और गुनगुनाइए।

ये है उजाला रेडियो, उजाला रेडियो के जरिए कॉफी चाय मिदक शो आपके वास्ते। मैं हूँ लॉर्ड महावीर, एन हेले गुडमिदक अलमाल, वेलकम बाय उजालास कॉफी चाय मिदक शो। आज बुधवार और भी 19 तारीख अगस्त, 19 अगस्त का प्रोग्राम कॉफी चाय मेरा शो आपके वास्ते जो हम पेश करने वाले हैं। अभी थोड़ी देर में आने वाले हैं आनंद चंद्रिका सिंह, हमारे साथ बात करने वाले हैं आज के समाचार के बारे में, आने वाले दिनों के बारे के समाचार के बारे में, एंड नेचुरली अंदरे लुख्तिगे ऑनवर्पे ऑप उजाला रेडियो तो जाने हैं। फॉर ऑल इंफॉर्मेशन चेक ऑन वेबसाइट उजाला.nl। कोई काम काज दिलाना है, advertentie, ja, kijk, commercial, vermaaisch, is die haar. Dus, minuut tussen met jaar, stuur je e-mail naar info@ujala.nl. Arbaki kan via opkersen via onze website. Je hoeft niet te mailen, maar vul je gegevens op onze website, ujala.nl.

0: और आज का प्रोग्राम हम शुरू करते हैं इस गाना के साथ। फिल्म का नाम है कामचोर। हम गनवा उजाला पे सुन ली तो सवेरे सवेरे फ्रुकू फ्रुकू को गनवा द्राय करता है अब उजाला एम फम को ले खास हम बोली गनवा कितना मोई गाना है यार है जो पति या नहीं नहीं नहीं जो पत्नी है या पति है दोनों अलबाई बीवी है या खाविंद है या फ्रेंड या फ्रेंडियन अगर आपस में एक दूसरे को इतना प्यार करते हैं आशिफा मकार हाउत दान ये सब बातें इजहार आप कर सकते हैं दान सख ये सुडिंगस मक्लकर तो कि तू हमार स्वामी बाटे वगैरह वगैरह वगैरह वगैरह मोई
1: उजाला कॉफी चाय मेरा शो शुरू हो गया है।

0: कोटों पे सच्चाई रहती है, जहाँ दिल में सफाई रहती है, हम उस देश के बासी हैं जिस देश में गंगा बहती है।
1: कोटों पे सच्चाई रहती है।
2: मुकेश, जो आप सबके प्रिय गायक थे, मेरे बड़े भैया थे। मुकेश भैया एक महान कलाकार थे, एक महान आत्मा थे और बहुत प्यारे भैया थे। कोई है जो उनकी याद में बेचैन नहीं? जब जब पुरानी बातें याद आती है तो आंखें भर आती है। उनके दिल से निकली हुई इस पुकार को भला कौन

उजान रेडियो देश भर में सुनाई देता है फियां दे बी प्लस तोर घर में तोर ओतु में तू बता दे सबको इसे उजान रेडियो दे या बी प्लस पर देश भर में उजान रेडियो द क्रोस्ट कैट द बेस्ट उजान रेडियो तुझे